0: मस्त सॉन्ग्स, कुछ जानकारी और बहुत सारी बातें। दोस्तों साथियों आपको स्वागत करते हैं जलसा फिजी रेडियो के साथ लाइव ब्रॉडकास्ट में। हमारा 720th एपिसोड है उन प्लेन्स मीडिया, और हम आप सभी लोगों को धन्यवाद देंगे फॉर योर सपोर्ट कि हम आज यहां तक पहुंचे हुए हैं। और आज जितने लोग सुन रहे हैं इन सभी को हम हैप्पी फिजी डे भी बोलना चाहेंगे। दिस इज़ आवर फिजी इंडिपेंडेंस डे, सो आई नो मेनी पीपल वुड बी सेलिब्रेटिंग, तो सभी को हम बोलेंगे हैप्पी फिजी डे। और ये जो प्रोग्राम हमारा है, इन दिस प्रोग्राम वी आर गोइंग टू टॉक मोर अबाउट दुर्गा पूजा बाय क्राइशियस बेंगोली कम्युनिटी। तो आप हमारे से जो सेशन आप सुनते रहे, और जो लोग हमें अक्सर फेसबुक में देखते हैं, देन वी विल बी गोइंग लाइव इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स ऑल्सो, तो देन यू कैन स्विच ऑन, और हमें फेसबुक पे भी आप फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज जो लोग फ्रिक्वेंसी पे, उनको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। अगर आप गाड़ी चला रहे हो देन डू बी केयरफुल, और जो लोग बाहर से सुन रहे हैं तो आपको बता दें कि क्राइशियस इज बीइंग अ बिट ऑफ फनी, जैसे हर वक्त होता है। वी आर नॉट श्योर हम फुल ऑन समा में है या वी आर स्टिल इन विंटर, बट या द वेदर इज अ बिट ट्रिकी। तो एंड साहिल इज हियर विद अस टुडे, और हमारे साथ और भी गेस्ट जुड़ रहे हैं। एंड इससे पहले कि हम जो अपना जो इंटरव्यू दुर्गा पूजा के विषय में हम जारी करें, वी वुड लाइक टू जस्ट हैव अ फ्यू वर्ड्स फ्रॉम साहिल एज वेल। तो साहिल जो आज गेम है, आई नो यू विल बी डेस्परेटली वेटिंग फॉर दैट, व्हाट्स योर पिक, इज ऑल ब्लैक्स इन?
1: एक्चुअली टू स्टार्ट विद हैप्पी फिजी डे टू एवरीवन, एंड जहाँ तक ऑल ब्लैक्स और वल्बिस का गेम का बात आता है, आई थिंक इट विल बी अ वेरी क्लोज गेम, इट विल बी अ गुड गेम, बिकॉज अगर लास्ट वीक आप वल्बिस को देखते हो तो दे वन अगेंस्ट लाइक 11 प्लेयर्स विद ना 11 प्लेयर्स के साथ में अगेंस्ट 15 प्लेयर्स, एंड दे स्टिल वन, एंड दे डिफीटेड द नंबर वन टीम ना, जिस टीम ने ऑल ब्लैक्स को हराया। तो अनलेस दे आर ओवर टू ओवर कॉन्फिडेंट, आई थिंक इट विल बी अ वेरी क्लोज गेम, एंड इट कैन गो आइदर वे। एंड ऑल ब्लैक्स के पॉइंट ऑफ व्यूज देखा जाए तो कितनी साल से देयर इज लाइक सो मेनी नंबर ऑफ मैचेस जहाँ पे ईडन पार्क दे हैव बीन अनडिफीटेड, तो उनको भी बहुत ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए।
0: Okay, we'll see how the match goes. And last time, मैंने same question, similar sort of answer साल से सुना था, that was the Crusaders game, जो I think it was Crusaders.
1: France और All Blacks का यहाँ पे हुआ था.
0: I think that was the
1: Crusaders पे पहला international game था ये नया stadium में. That was also a very close game. So उसी तरह क्योंकि अभी All Blacks team build कर रहा है, and All Blacks team भी it's building, but काफी हद तक उन्होंने improve किया है. And given ki next year World Cup year hai, so this year every single team is good. Now because they're preparing for World Cup next year.
0: Yeah. And what about Australia's cricket team? I heard they are not doing very good this time.
1: Actually, maine abhi cricket follow kiya hi nahi. There's
0: Maybe हमें अपने गेस्ट से पूछना चाहिए ना, सो मे बी विल इंट्रोड्यूस अवर गेस्ट ऑन बोर्ड, बिकॉज नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिकेट, एंड इनसे बेहतर कौन हमें बता सकता है। सो वी वुड लाइक टू थैंक अर्पण मुखर्जी आने के लिए स्टूडियो, थैंक यू सो मच। आई नो यू आर प्रिपेयरिंग फुल ऑन फॉर दुर्गा पूजा, बट उसके विषय में भी हम बात करेंगे। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर मोर पीपल टू जॉइन अस, एंड वी हैव गॉट अ शुभ फ्रॉम क्राइशियस बेंगोली कम्युनिटी एज वेल। तो आर यू फॉलोइंग क्रिकेट?
2: Yes, we do.
0: Definitely, yeah, you're from India, so...
2: Absolutely,
0: yes. Yeah, yeah. So what do you think about Australia these days?
2: Yeah, so yes, it would be a very interesting series to watch with the Black Caps. Both sides have huge talents and great bench strength. And it would be good to see how they come across and put their best foot forward. So it would be quite interesting show on display.
0: Yeah, and Shubha, do you follow cricket?
3: Yeah, like open the sides, probably.
0: I shouldn't even ask this question to you.
3: Yeah, it's probably other sports you might ask, but cricket's probably.
0: I think
3: it's a very young Indian side, so there's a lot of new faces to look into and see how they sort of match it to. And I'm taking my 5-year-old to a match, so we'll see how he enjoys that. But yeah, definitely, it will be an interesting series to watch.
0: Yeah, definitely. And just quickly, Durga Puja, before we are joined by others, so Arvind ji, tell us about how your preparation is going.
2: Well, it's full on, actually, just 1 week out. 6 more sleeps to go before we have the big day. So, yes, we are going down to the final details now, planning our run sheet, how we manage everything else, and we are expecting a good turnout. So, everything put together.

0: it's quite a task at hand, but we are all up to it. We have got a whole lot of volunteers coming up to help us out. So this year, like every year, it's growing in size and popularity. So it's become a very popular event in Christchurch, especially in the cultural part of it. So I think we are in a good spot, but there's some more work to do before the D-Day, and we are just planning the next steps carefully so that
1: Yeah.
0: everything comes out very well.
1: Good to know. And Shubha, what's your role up? Kya kirdaar nibhate ho?
2: So the main role that I've been allocated is mainly to look after the health and safety because of my background. And obviously, we are trying to make sure that we have a first aid stall at the venue so that if there's any need for any medical assistance with minimal things, then we are able to do that. So main thing is about that, making sure that we have enough resources, making sure that we have access to first aid and things like that. And apart from that, pretty much helping with everything. So we are working a lot on managing the traffic around to make sure that there's no problems to the residents around the venue and things like that. And like Arpana said, there's lots of bits and bobs going on with the decoration team, with our things getting into the venue, organizing the food, organizing the stage and everything. So because it's in the final 6 days, so there's lots of things. And we are all sharing multiple teams, so we are pitching in different teams in different capacities.
1: ग्रेट गुड टू नो. और जी हाँ, हम न्यूजीलैंड में, अगर आप हमसे बाहर कहीं सुन रहे हो, तो अब वही है, हेल्थ एंड सेफ्टी इज़ अ बिग डील, और हमें काफ़ी सीरियसली लेना पड़ता है, अदरवाइज वी कैन गेट इन ट्रबल विद द लॉ. सो गुड ऑन यू शुभ फॉर डूइंग दैट फॉर अस. और बिफोर वी गो फर्दर, हम शिवनील को भी धन्यवाद देना चाहेंगे, हु इज़ हियर विद अस इन हेल्थ. ही इज़ गोइंग टू हेल्प अस विद द टेक्निकल सपोर्ट, स्पेशली जब हम अभी फेसबुक लाइव पे जाएंगे. और साथ साथ में जो लोग अभी शायद घर पे होंगे और दे आर काइंड ऑफ थिंकिंग, तो आपको बता दें कि आपको जाना है लिंकन इवेंट सेंटर, जहाँ पे गरबा, जी हाँ, जहाँ पे गरबा हो रहा है. एंड इट इज़ बीइंग प्रेजेंटेड बाय माँ अम्बे एंड गरबा रोल्स, जो टीम है बिल्कुल तैयार है. सो यू हैव टू बी देयर, आई थिंक इट्स स्टार्टिंग एट 6:30, सो बी ऑन टाइम, बिकॉज अदरवाइज फिर शायद बाद में देर होगी, यू माइट वॉन्ट टू एन्जॉय मोर. लेकिन उसका भी जो टाइम होता है, जैसे शुभ ने कहा, दिल्स हेल्थ एंड सेफ्टी, तो टाइम के आधार पर ही चलता है. सो बी ऑन टाइम, दिस मेनी थिंग्स जिसके विषय में हमने पहले भी बात किया, सो दोज वीडियोज आर आउट देयर. बट अभी शिवनील के, सॉरी, साहिल के पास एक सॉन्ग है विच वी आर गोइंग टू प्ले, एंड एज सून एज दैट सॉन्ग finishes, we are going to go all live on Facebook, and we are going to give you full details about Durga Puja, so what you expect, या तो फिर जो last interview और अभी से बीच में किया उन्होंने, progress किया है, और वो सब भी हम आपसे share करने वाले हैं.

0: Jalsa Fiji Radio, Jalsa Talent Series and Jalsa Business Series would like to express their gratitude to the following sponsors. Generation Homes, contact them for your building requirements. And Lifestyle Solutions, contact Richard Sevak if you need help with insurance. And contact Varun Jani of Next Step Accountants and Business Advisors for accounting needs. And contact Rohit Sajadeva of Better Choice Home Loans for your financing needs. And contact NZ Flames, Baba at Wairaki Road for your hairdressing requirements. And contact T. Nandan of GoWise Driving School if you need driving lessons. And contact Anshul Gupta of Client Real Estate, who can assist you with achieving a better sale for your property. And contact Monil Pratap of Majestic Stays if you are looking for accommodation in the city. And contact Dini from On The Go Eastgate for all mechanical requirements. जी हाँ दोस्तों, साथियों आपका पुनः स्वागत करते हैं जलसा फिजी रेडियो के साथ लाइव ब्रॉडकास्ट में। ये हमारा 720th एपिसोड है विद प्लेन्स मीडिया और मैं प्रोग्राम डायरेक्टर विनेश, और हमारे साथ में साहिल इज हेल्पिंग मी विद पेनलिंग एज वेल एज शिवनल शर्मा जो आज हमें टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं। जो लोग हमें फेसबुक में जुड़े उनको भी हम स्वागत करना चाहेंगे अपने इस प्रोग्राम में, और जो लोग स्पेशली हमारे जितने भी सुनने वाले हैं या तो फिर जो फेसबुक में जुड़ रहे हैं उन सभी को हैप्पी फिजी डे हम बोलना चाहेंगे। और साथ साथ में आपको रिमाइंड करना चाहेंगे दैट यू कैन गो टू लिंकन इवेंट सेंटर फ्रॉम 6:30 PM जहाँ पे जो गरबा 2026 होने जा रहा है, इट इज प्रेजेंटेड बाय गरबा रोल्स एंड मां अंबे। सो बी देयर ऑन टाइम 6:30 PM एंड एंजॉय बहुत कुछ वहाँ पे, एज वी हैड बीन टेलिंग यू इन द लास्ट काइंड ऑफ फ्यू डेज, या तो पहले भी आपने इंटरव्यू में देखा होगा। फॉर टुडे, जैसे अगर आप शिवनल जी अगर आप कैमरा इधर भी करोगे देन वी कैन सी दैट आवर गेस्ट हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। वी हैव अर्पण मुखर्जी एंड शुभ फ्रॉम क्राइस्टचर्च बंगाली कम्युनिटी। हम बात करने जा रहे हैं दुर्गा पूजा 2026 के विषय में, और भी जानकारी आपको देंगे। और साथ साथ में हम वेलकम करेंगे हितेश शर्मा जो काफी दिनों के बाद में वापस फिर आए हुए हमारे स्टूडियो। सो थैंक यू हितेश फॉर कमिंग, हम आपसे भी बात करते चलेंगे। तो चलो हम आपको याद दिला दें कि जो दुर्गा पूजा जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, इट्स हैपनिंग ऑन 17th of October एंड इट्स हैपनिंग एट जो रिक्रिएशनल मल्टीकल्चरल रिक्रिएशन एंड कम्युनिटी सेंटर है 455 हेगली एवेन्यू, जिसे हम पहले काफी ईजी से बोलते थे नेटबॉल कोर्ट, अभी काफी लंबा नाम हो गया। बट इफ यू कैन रिमेंबर इट इज जस्ट ऑपोजिट द क्राइस्टचर्च हॉस्पिटल, वैसे उसका भी नाम है क्राइस्टचर्च वुमेन्स हॉस्पिटल, बट इट्स जस्ट ऑपोजिट दैट 455 हेगली एवेन्यू, यू कान मिस एंड इट्स हैपनिंग देयर। जो लोग पहले गए हुए देन ऑब्वियसली दे विल नो बिकॉज दिस प्रोग्राम हैज बीन देयर हैपनिंग एट द सेम वेन्यू फॉर नंबर ऑफ इयर्स, आई थिंक अभी हो चुका है।
1: Yes, it has been happening for since 2024.
0: जी हाँ, तो यू विल नो, और जो लोग अभी नए आए हुए क्राइस्टचर्च में तो फिर यू कुडंट गेट द अपॉर्चुनिटी बिफोर, देन यू कांट यू एंड यू शुडंट मिस दिस वन। एंड इट्स हैपनिंग फ्रॉम 9 AM आई थिंक 9 AM टू 9 PM, और बीच में लंच है जो वो भी वहाँ पे रहेगा। सो यू शुडंट मिस, एंड काफ़ी एक्टिविटीज है जिसके विषय में यू आर गोइंग टू गेट टू नो मोर अबाउट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो चलो अर्पण, हम आपसे ही शुरू करते हैं। यू आर अर्पण मुखर्जी, नॉट टू बी कन्फ्यूज विथ अर्पण मंडल,
1: ही इज अ पर्सन।
0: जी हाँ, सो अर्पण मुखर्जी थैंक यू फॉर कमिंग। सो आप बताइए, जैसे हमने आपसे पहले भी सवाल किया था कि द प्रोग्रेस हैज बीन गोइंग वंडरफुली वेल विच इज़ गुड टू नो, और फिलहाल आप तो कितने दिन बचे प्रोग्राम का?
1: जस्ट सिक्स स्लीप्स बिफोर द बिग डे, एंड सैटरडे इज ओपन टू पब्लिक। वी वुड आस्क एवरीवन इंटरेस्टेड टू कम टू रजिस्टर ऑन इवेंट ब्राइट सो दैट वी गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ मच ऑडियंस वी आर गोइंग टू गेट ऑन दैट डे। सो बट इट्स ओपन एंड यू कैन, देयर इज अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज ऑन दैट डे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट फ्रॉम 9 o'clock वी हैव पूजा, वी हैव programs for kids like a magic show for more than an hour, which it will be very engaging for the children, also a train ride for a couple of hours, there will be also

0: दे एग्जीबिशन जिसे हम आप मेंशन कर रहे हो, एंड देन यू एक्चुअली लर्न अ लॉट और काफ़ी आपका जो अप्रिसिएशन ग्रो होता है. आप क्यूरियस तो होते हैं बट एक्चुअली यू एक्चुअली लर्न अ लॉट. हितेश, आई एम गेसिंग यू आर नॉट फ्रॉम बंगाल.
1: मैं बंगाल से नहीं हूँ सर, पर मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप इन स्कूल फ्रॉम बंगाल एंड आई बीन टू कैलकटा मेनी टाइम्स एंड लव इट, लव द वाइब. मेरा जो एक्सपीरियंस था, मैं आप अगर आप इफ यू अलाउ मी टू शेयर, आई यूज्ड टू प्ले फॉर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडियाज बास्केटबॉल टीम अ लॉन्ग टाइम अगो, एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग आई हैव सीन इन कैलकटा अराउंड सॉल्ट लेक स्टेडियम, एंड यू माइट बी एबल टू क्वालिफाई दिस, देयर आर लॉट ऑफ फूड वेंडर्स, स्ट्रीट फूड. And we were there, and I saw like a really big, the largest bull I've ever seen in my life. It used to go to every stall, and every vendor by their own conscience offered anything they could offer that bull. And if the vendor was busy, he would just patiently wait. And I'm talking about a street full of people. It was like, you know how Calcutta is like. It's people, people, and people. And people were very... supportive of this, and they respected the bull space. He will eat at every stall and then disappear, I don't know where. And this used to happen every day. I was there for like 5 days and I saw this happening every day. So that was very fascinating for me. So I got a lot of really good memories. I wish I was able to visit Calcutta during Durga festival, but I was not able to. But here we are in Christchurch.
0: Yeah, absolutely. You live the feel and jo aap miss kar gaye, then you can enjoy. And kafi log humse milte bhi wahi bolte hai ki hum jab India mein rehte hai, we can't go at certain place, hum nahi ja pa rahe hain. We can't go there. But yahan pe wahi advantage hota hai ki Christchurch, we are like 30 minutes away from any venue. Jaise abhi garba jo hoga, it's 30 minutes away from here. We can go there. और अभी जो दुर्गा पूजा होगा, अभी जहाँ बैठे यहाँ से आई थिंक 5-7 मिनट्स ही दूर है, एंड वी कैन बी देयर, सो वी कैन विजिट ऑल दोस प्लेसेस. इवन फिजी इवन भी कुछ हो रहा है, नो आप जा सकते हो. सो दैट इज द थिंग ओवर हियर, वी कैन जस्ट गो एंड एक्सपीरियंस. तो अरबन जी, वो जो बुल की बात कर रहा है हितेश, इज लाइक वो अभी भी अराउंड है?
2: There is a whole a lot of respect for animals, because if you look at our deities, every deity has an animal. That's basically the Hindu culture is protecting the ecosystem. That's why we have animals attached to each of the deities. I think that is even there, but probably not as many cows in the streets these days. But earlier there used to be quite a few. Things have changed, moved on. But I think the feelings are still there.
0: Do you still have tigers? No, tigers, sir.
2: It's in South Bengal, Sundarbans. You have Royal Bengal Tigers, yes.
0: You mean the jo janwar tigers, not those jo team apna naam rakhte
2: hain? No, absolutely. Yeah, Sundarbans, as you know, it's the largest delta region in the world. And they say it's tigers on land, crocodiles in the river. So it's not a very habitable place. But people still live there, and it's a unique place in itself. I have never been there, but heard a lot of stories about Sundarbans.
0: Yeah, so देखिए जिस तरह ecosystem हम कहते हैं, it is a balance जो है, and I think that's something हमसे छूट रहा है धीरे-धीरे with everything that's going around and happening. So I think those are the places we must learn, and there is a reason for that ecosystem किस तरह balance होकर चलना चाहिए, and I think that is slowly. हम कहेंगे इट्स अ बिट स्लो बट इट इज कमिंग. पीपल को रियलाइज हो रहा है, दो वी आर कॉम्पीटिंग विद एवरीथिंग एल्स दैट्स हैपनिंग, बट वी आर एक्चुअली रिकॉग्नाइजिंग एंड अप्रिशिएटिंग, क्योंकि अब हमें पता लग रहा है कि आइस का क्या हो रहा है एंड हाउ द टेम्परेचर इज चेंजिंग, वेदर इज चेंजिंग. अभी तो हमें पता ही नहीं लग रहा है कि विंटर में क्या होना चाहिए, या तो फिर सभी कुछ गड़बड़ चल रहा है, बट दैट इज टू डू विद इको सिस्टम, एंड इट्स गुड टू नो दैट इट इज हैपनिंग आउट देयर. तो चलो, हमने काफ़ी बात की है, और एक चीज़ आई थिंक और अरबन जी लोग जानना चाहेंगे, एंड देट इज़ दी प्रोसीजर या जो रूल्स है, प्रोसेस है अबाउट पूजा इट्सेल्फ.
2: यस, देर इज एक्चुअली द पूजा इट्स इन इट्सेल्फ इज कंप्राइज़ ऑफ लॉट ऑफ संस्कृत मंत्रस बीइंग चैंटेड, एंड इट्स अ पूजा ओवर 9 days, विच वी सेलिब्रेट 5 ऑफ दोज डेज विद पूजा. And the 5 days are being compressed into four hours each session, I think. So we'll have a session on Friday evening of puja, and then 2 or 3 hours on Saturday morning, and a few hours in the evening. But in the evening, we also have something very attractive and very unique is a dance, a Dhanochi dance, which we call it, which is dancing in front of the goddess when actually bidding the goddess.

0: एंड यू कैन एन्जॉय एंड एंड देख सकते हो कि वट एवर अर्पण इज ट्राइंग टू से, तो यू कैन एक्सपीरियंस योर सेल्फ विच इज गोइंग टू बी क्वाइट इंटरेस्टिंग, स्पेशली दोज लोगों के लिए शायद आधा दे हैवन सीन इट फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, बिकॉज आई नो पीपल हैव मूव फ्रॉम their own homes or they have been living in this foreign country, we bol sakte hain, nahi bol sakte, depending how you look at it.
1: Lekin, away from home
0: then you can actually go back and recall those kind of fond memories jo apne desh mein jis tarah hum ye sab cheeze manate the, and there is a good opportunity, so do take advantage. And I would like to thank the whole committee, Crashers jo Bengali community hai, they are working really really hard, aur choti si choti cheez se lekar jo bhi kuch aap mention kar sako, that's what they are taking. Ek din mein abhi hali mein gaya tha, and I saw people sitting on the table and they were trying to do those badges. So those things, they keep on working, because we work in progress hota hai na. Of course Hitesh has done it for so long, ab retired to nahi hue na, abhi abhi win kar rahe ho.
2: Next year, sir, bade projects are there. It will be very exciting time.
0: Yeah, because Hitesh knows all about it, because it is those things that you do behind the scene jo logo ko nahi dikhta hai, but there's all the hard work, ek ek choti choti cheez ko aapko dhyan pe rakhna padta hai, so that you have everything over there, speaker se leke, you know, nothing should go wrong. Technical kabhi kabhi dhoka de deti hai, so you always have to have that plan bhi rakhna padta hai. And Hitesh, I mean, we have been knowing each other for so many years, so agar hum baat kare us samay se abhi, what are you saying? I think the events are increasing, and
2: absolutely I love it. I wish, I think it's a really exciting time to be in Christchurch, especially because the community is growing, not just our you know, when you look at the diversity of our community, let's say just the extended Indian community, there's so much diversity. Jaisa aapne bola ki aaj garba bhi, I think aaj do garbe, I think there's one in town and as well, there's one in Rolleston as well. Of course, jo bahut hi significant events are like Durga Puja has been happening. It's been instilled in the community 11 years running. It's a huge feat. So I think it's honestly, mere ko nahi lagta ki main aisa kuch miss kar raha hu jiske liye mujhe aisa lagta hai ki India jane ki zarurat hai.
0: Maybe those train rates.
2: For example, अभी दुर्गा पूजा, ये वीकेंड गरबा है, नेक्स्ट वीकेंड दुर्गा पूजा, उसके बाद दिवाली है,
0: दिवाली आ जाएगी, नवरात्रि,
2: पूरा नवरात्रि, और बाय द टाइम वी नो इट द ईयर इज ओवर, और उसके बाद फिर होली कट हमें आ जाएगा, तो आपको फिर होली में आना पड़ेगा.
0: और वही होता है, एंड वी सी द सेम पीपल बम्प इनटू ईच अदर, एंड हम इसी तरह सेलिब्रेट करते रहते हैं, एंड देन वी जस्ट लर्न अबाउट द अदर कल्चर, एंड देयर इज अ वीडियो अबाउट क्राइस्टचर्च. सो अर्पण जी, आई नो यू आर प्रीटी एक्साइटेड इस साल को भी लेकर, एंड यू आर ऑल काइंड ऑफ प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग. और एवरी टाइम हम जब भी आते हैं, तब हम जो माता जी की जो मूर्ति देखते हैं, तो इस बार उसके विषय में आप कुछ बताएंगे?
3: सो दिस इज अ न्यू आइडल विच वी गॉट लास्ट ईयर, एंड आई थिंक दिस इज वी गॉट इट फ्रॉम द प्लेस वेयर दोज मूर्तिज आर मेड फॉर मोस्ट पीपल, एंड इट वॉज डन बाई वन ऑफ द स्टॉप आर्टिस्ट. वी आर रियली प्राउड एंड ऑनर टू हैव दैट. And we have a very senior member of the community who keeps the murti in her place very well, because storage is a big issue, and you need space for keeping such stuff. So she has been very supportive. She is one of the senior most members of the community, and she has been with the Durga Puja even before it became a community puja, actually. So she has been more than, she was part of the community, part of this puja when it was used to happen in somebody's house in their garage. So she has seen the entire journey. So, and the murti has changed. Prior, 2 years ago, we had a different murti. It was an old one which was actually given to us from Wellington, where I was actually. When I came to this country, I had seen that murti in Wellington. Then it moved to Christchurch, and now we have a new murti, and we are really excited about this murti, and and with the blessings, I think it will keep going well, I hope.
0: जी हाँ, बिल्कुल. माता जी की जब ब्लेसिंग रहेगी, और तब तो सभी कुछ मुमकिन होता है. आई नो, आई मीन, जो लोग बंगाल के हैं, दे एक्चुअली वेट करते हैं इस पूजा के लिए बहुत. वहाँ पे तो डिफरेंट तरह की जो परिश्रम और वहाँ का एटमोसफियर सब कुछ अलग होता है. जैसे अगर हम फिजी की बात करें, जब दिवाली होती है, क्रिसमस होती है, जो कुछ हमारा होता है, देन वी नो एक महीना या दो महीना से सब शुरू हो जाता है, एंड एवरीबॉडी स्टार्ट्स क्लीनिंग, एंड देन वी सी ऑल द सेल साइंस गोइंग अप, एंड यू नो सब शॉप्स उसी पे टारगेट करते हैं. रेडियो इज प्लेज अ बिग रोल ओवर देयर, बिकॉज रेडियो में बार बार आप उसी तरह का जो धुन सॉन्ग्स एंड वो सब चीज़ बजना शुरू हो जाता है. यहाँ पे शायद वही कुछ तरह लेक होता है, बट एट द सेम टाइम नाउ हम सोशल मीडिया पे जब देखते हैं, सो मेनी थिंग्स हैपनिंग, जितने

0: इज डू रिकॉग्नाइज देम, बिकॉज अगर उस दिन कुछ होता है एंड यू वांट टू नो हु द ऑफिशियल्स आर, एटलीस्ट यू नो हुम टू गो टू. तो आई थिंक वीडियो में वही एक चीज़ और भी हो जाता है, पीपल आर नोइंग इच अदर. और कभी कभी ऐसा भी होता था कि पीपल आर नॉट अप्रोचिंग अदर पीपल बिकॉज उनको पता नहीं चलता था कि हाउ दैट पर्सन वुड रिएक्ट, वो नो क्या बोलेगा क्या नहीं. बट नाउ दैट वी आर एबल टू डू दिस इंटरव्यूज, दे कैन एक्चुअली अप्रोच है, उनको लगे यार अरोपन तो ठीक ठाक बात कर रहा है, नो अच्छा ही इंसान होगा, काइंड ऑफ थिंग, नो स्माइल भी करता है. तो दैट्स हाउ वी आर ट्राइंग टू पीपल फॉर देम टू नो दैट यू कैन अप्रोच देम. कुछ इश्यूज होगा, कुछ प्रॉब्लम्स होगा, यू कैन. एंड द अदर थिंग इज, जैसे हितेश ने मैंशन किया है कि हमारा जो कम्युनिटी ग्रो हो रहा है, और अर्पन ने भी कहा है कि ही वॉन्ट्स टू पास ऑन द बेटन, तो इट कैन ओनली हैपन इफ वी हैव न्यू पीपल कमिंग इन. और हमें नहीं पता चलता कि उस क्राउड में कौन बंदा में क्या टैलेंट है, क्या कुछ कर सकता है. सो आई थिंक इफ यू आर लिसनिंग, इफ यू आर वन ऑफ दोज पीपल पैशनेट अबाउट दुर्गा पूजा, या आपके पास कुछ हुनर है, आप अपना योगदान देना चाहते हो, देन यू वॉट यू शुड डू इज स्टेप आउट एंड टॉक टू दिस जेंटलमैन ओवर हियर, एंड हु नोज यू माइट बी द पर्सन दे आर लुकिंग फॉर. तो ये भी हो सकता है, तो बी माइंडफुल ऑफ दैट. और हम समय पर भी नजर दौड़ाते हैं. आई थिंक वी हैव गॉट अ सॉन्ग टू प्ले as well, so we will just go quickly around and then we'll allow some time for a song as well. So Arpan ji, jate jate hamara jo audience hai jo sun rahe hai, aapko dekh rahe hain, Durga Puja ke vishay mein jo aap unko invite karna chahoge?
1: Definitely, we will ask everyone to come and join us to celebrate this annual event, which is full of fun, unlimited fun. It will give you a taste of Bengal, and you will definitely love every moment of it. There are so many events in the mega event itself that will be engaging for people of all ages, and definitely great food and a great environment. So I would request and invite everyone who has the time to come over to Multicultural Center on 17th of October, Saturday, from 9 a.m. onwards. We are going to start our celebrations and join us in the festivities. Definitely, yeah. We'll like to see you there.
0: थैंक यू सो मच अर्पण मुखर्जी. तो जैसे आपने सुना है, आपको आना है जो रिक्रेशन जो हेगली एवेन्यू, मैं 455 हेगली एवेन्यू बोल दूंगा, जस्ट टू बी इजी, एंड देन यू कैन गो ओवर देयर एंड हैव अ गुड फन टाइम ऑन 17th ऑफ अक्टूबर. चलो हम बढ़ते हैं शुभ की ओर. ही इज द हेल्थ एंड सेफ्टी का है, वैसे तो लोग जो साड़ी वगैरह जो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आने वाले हैं, एंड दे माइट बी वेयरिंग हाई हील्स एज वेल. आई एम श्योर शुभ आपको रोकने वाला नहीं है, बट बी केयरफुल, माइंड द स्टेप्स. शुभ जी, आपकी तरफ से इन्विटेशन.
2: Yeah, like I said, we'll like to invite everyone who would like to attend and come from all ethnicities, all cultural groups. Inclusivity is one of the main things that we do it. And I think, as I said, it's a community event. So the community is a very important part of it. So invite everyone to come and join. Please, if it's possible for you guys, register on the event, so it makes it slightly easier for us to plan the things accordingly. But it doesn't mean that if you don't register, you can't come. So you can turn up on the day at all, no issues at all. And like I said, it will be a lot of things for every age group. So if you have a toddler with you, there will be enough things for keeping him or her engaged. And if you are a couple who just wants to soak in feelings of Kolkata, there's enough stuff for that as well.
0: थैंक यू सो मच शुभ. चलो बढ़ते हैं हितेश, वी हैव गॉट अ मिनट, और आप आइए हितेश से मिलिए, बट डोंट आस्क हिम फॉर द प्राइस ऑफ राइस, बासमती राइस के प्राइस मत पूछना. तो आप बताइए कि दुर्गा पूजा एंड इनविटेशन टू पीपल.
3: आई एम सर्टेनली एक्साइटेड, आई लाइक टू एक्सटेंड द इनविटेशन टू एवरीबॉडी. एज द टीम मेंशन, कम सपोर्ट द इवेंट, सपोर्ट द फेस्टिवल, सपोर्ट द टीम बिहाइंड इट. आई थिंक इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, लॉट ऑफ personal time and commitment to organize community events. So a huge congratulations and kudos to your team.
2: Thank
3: so
2: you.
3: Please come and support the festival. Agar aap बंगाली कम्युनिटी से हैं तब तो आपको पता है क्या करना है, कैसे ड्रेसअप करना है. और अगर आप नहीं हैं तो प्लीज़ मेक अ स्मॉल एफर्ट, इट शोज अ लॉट. अगर आपके पास कुर्ता है, कुर्ता पहनिए, साड़ी है, साड़ी पहनिए, कम एंड अटेंड एंड हैव फन.
0: जी हाँ, थैंक यू सो मच हितेश जी. और हम एक्सपेक्ट करें कि हितेश भी इज गोइंग टू प्रैक्टिस व्हाट ही इज जस्ट प्रीच्ड,
3: एब्सोल्युटली.
0: तो वी आर गोइंग टू लुक फॉरवर्ड टू दैट. तो चलो हम यहीं समाप्त करते हैं, बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम एज वेल. तो सभी को हम अलविदा कहना चाहेंगे इस वादे के साथ में, वी विल ज्वाइन विथ यू अगेन इसी तरह सैटरडे को एट 5 PM. बट बीच में वीडियोज वगैरह हम लाते रहेंगे, जैसे हमारे पास कुछ समाचार मिलता है शेयर करने के लिए. अदरवाइज हैव अ गुड टाइम, हैव गुड फन, और डोंट फॉरगेट आज गरबा रोल्स, गरबा जो जाना है लिंकन इवेंट सेंटर, आप जा सकते हो एट द सेम टाइम. I'm happy Fiji Day to all of you, and don't forget Durga Puja on 17th of October, 455 Hegley Avenue.